ग्राय भूफुलाल लगत वगी वाने सिंगुही बुआ फुंगी दी लाइन था सिंगु बुआ फुंगी लाइन मयाम थोलक मम्मा पम लम ले हाउस।

हौजिक पुंफम असीदी संगाई चैनल की थमजरीब थौरम सिंह खंगहनजरी अयुक पुंग तरुक मिनट तरा लांथोक्चगनी सीदहिदा पुंग तरुक मिनट तरा मंगा लैबाक निंग बा इसाई सिंग संदोक्चगनी तोंगान तोंगान बा सैसक बा सिंग नसक बा मतम इसाई सिंग तहनजगनी अयुक पुंग तरुक मिनट कुन मंगा पुंग तरुक मिनट निफु थमजरी रेडियो क्लास चहुम तरा मंगा सुब तांकता क्लास सेवेन की सोशल साइंस हिस्ट्री लेसन 14 थौरम असी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंबांग लोनना संदोक्चब थौरमनी खोंजल नाचोम संदोक्चगनी अयुक पुंग तरेट थौरम असी दा तहनजगनी चयोल सिद मणिपुर थौरम लांथोपिगदब खाइदेम विक्टोरिया इरुंगबम मनीसना अमदी सिल्की चनमबम थौरम पुथोकपा सगोल सेम रोमा

पाखत चाउब थमोइनी मीपाई चाउब पुकनिंगनी हौना सानी नुजा मपोके ओइजनिंगे नंगबु ऐतगी लैहनिंगे इनाकतदा अदुबु लेपलरबदा मितमांगदा पंथखरी पुकनिंग वखल नुशी नंगी मयाइसे ओंथोकनासु कनख्रिदा।

मतम इसई सिंग मथंग मथंग ताबिरे खुदोल तमजखिबा इसई सिंगी सैसखिबा मदी सैरेंगबा सिंग मथंग शिदना आहान बैसगी सैसखपा माइबम रोशी बिना देवी सैरेंगबा मखोन मनी मोंगसाबा अनिशु बैसैदा माइरेम नीलबती न सखपा कैशाम प्रिय कुमार सिंह ना सैरेंगबा मतम इसई अहुम सुबदा खुदोल तमजखिबा इसई सैसखपा असेम अमरजीत सैरेंगबा वाइखोम बिहारी आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लांथोकचरी रेडियो क्लास चहुम तरा मंगा सुब तांकता क्लास सेवन की सोशल साइंस हिस्ट्री लेसन 14 थोरम असी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंबांग लोइनना संदोकचब थोरमनी

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मथंगडा खुदोल तमजरी एश किंग अमदी सशा तिरुपति दगी गीत।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नए झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: मथंग दलांथोक चकदौरी बा गीत की सैसकली बा नीति मोहन।

0: रही वासी पाथौ पुनमक ताबियो अखोयंगसीदगी इरे पा कनबगी खोंजंग थवाई थाबकीदना संसिलसे अखोय निहन नजरोय पाथौ अतै इमा अराइबनी पोंगफम लमदम मैत्रबा कनबना अखोयगी पुनसीगी थौदांगी मैतै निथौ मसासिंग मरै पा थादोतुना सेनखरे माइकई खुदिंग अवान तमथीन ओपी बगी मिकप मिराव खोलतना निल्लरे
1: पथो मैतई पाई चालन फाकयापु कुपाक तयाईनी न लेंगलका तमथीन ओ नैतुना अवाले पाक तपुखरे हाइन तारे ने पथो
0: कली ओ इरई पाक इरमदम खुंताक लान सिरबा
1: पथो
0: मिकप मिराव खोलतना थल्लबा आई कोई अखोय तुम्हें लय थोक पयादरे अखोय लान संगसे
1: अचुम पनी पाथो इमाले पाक की तमक थवाई न पंथा पीक तपने
0: हौजिकी अखोय की सिंगमी तमी पाथो साम लेरे अखोय न सुइदना लान माई पाकने नसीगदी कोरो सुमम सिलक लबनिना मोंग ब इरान याई द हनरसी हयेंग इनुंगान बदा थवान तोमजिंग द उनरसिको
1: पथो
0: इताओ आहान बलानजंग थवान तोमजिंग द हान लामबन छारगा
1: ओ
0: वाइथो सिंगोन छारबा येनबा वहागी लामबलसे थुकाई कतबने
1: थुकाई कतबने पथो तुते खोंतोइरसी
0: खोंतोइरसी
1: ओ तो लोग बुशिपु ए गाइने कदाई चतकेना
2: नुमितां वाइता लैसाना कोक्त संपूतु न लागपति इसिंग सोकप लागपा मशाना तुम तापने पुंग अतुकने पुंग अम्चुंग नंग पुआपाना ngai पीपने हेग उपकलाग हलू हाई तुना आईगों ता हैरक पीपने को
1: अहाक पु अपान थी पीपा
2: थी हो पने प्रप प्रप चलो इपुंग प्रप प्रप चलो ने युम्ता
1: इता ngai नेम ना हाई पीपसे यहाँ प्रणे आई पु मफम असी तक को तू नमक माना चट्टी पपाम पनी ने
0: इताओ इपाना कहूँ बड़ी अरुबवा की ओरम गनी शटलो ने इताओ
1: नई नेम न सो इताओ न सो आई पु तू नमक चलनिंग बको कोई रो इता इसल्टी को लोई बीच चिंग ले बाग था दोक तो ना तंपाक लम्ता चट्की कतपा
2: आई अतुम नो इतपा नंसनु इसे मुतो सुना को तो
1: ए इतो ngai nem se ning them sana ko nung to ko tu namo pupi ko ए ngai nem nang itao ka pari nuai nuai pa sapiu ko ipung chatpike ipung chatpike
2: ko nang ai nang sunga ngau pa
0: nang sung bua ngau ba hai ngu ngai nem mahak na he ba wa sumdara
2: करम ना चुम प्रने पु
0: करी की सुमदनी सुम्बु सुमद्रो अवांग बप्पा मेल द सासबी सिंगले रांग ओई बिन हाक पु तंपाक लमगी पाखंग ना पाई मनुंग गी जवाब फोंदोक सनिंग बा निंगोल पु निंग खंग दबना ngang thok si lai tol ki si ki pakhang wa na khang lak pa koro singbum yam lak pe do
2: tampa oi pa naram cha नुसालाई पग चाउ पीकी नुशी माई थोंग या पीरोई ट्रा खल्लू पता निंगोल इनिंग तंपंगम चत्रे
0: नाइनेम नंगाईगा निंथेम सना कोलुंग चत्लगा दबनी हाई बसी इताउं गम्सुंग ना हाई बस चुम दबरने
2: नहाग दी कोई पुंग निंथेम सना ई मांग पत्रपा लोई पी नारकी उरीना तमकी पामेलता तांग सबा यारोइता आई इस्टिन खोंग तचत पी के पुं
0: आई नेम मधु कनान हाय हाय
2: चिंग ततोंग पी चिंगी निंगोल आई पु निंथेम सना कोनुंग ता करम ना पू कतौरी पा ओई थोक ट्रपा यावाने चतन पी की चाव रपपल कराम न तराई ना लान कनी पुं
0: ngai nem adum na kari gi tayang ta sui khan bage ai di ning them sana konung de sat loi ai gi taibang mikap thok lak pham 로이비 싱레이 박세 타독두나 마팜 까다이다 묵샷 루키네
2: 이뻐
0: 닝템 사나 꾸눙다 아이 아묵 하늘 샷 로이네 가이네
2: 아 이쁜가이까 로이나빠 이빠 콜락빠가 마이테이 이마가나 우르까 야암나 사위 하이 아 이마나 우크랍디 이카이세예 마욕나 방암로예 아이 싱콩다 잣삐게뽕
0: 가이넴 가이넴 아 암타나이 쿠오 싱콩도 잣뿌도 아이 슈야오게

0: इमालैबाग मणिपुर नसा गंभीर सिंहानी मा येक नवावागी मखुत्तगी अमुक्तं उधार तो बगम खीगद्रा करी मैं तेरी ले पाक खुंताक लबा मैं तेरी माँ करीगी कबली नचा गंभीर सिंहागी थवाई ने ले गई इमा मिखा पोन बदी ओय थोकता बने थाप लबा कसाद ले दुन सुईमा नचा गंभीर सिंहागी थवाई दी माँ मणिपुर नंगी न तंबाक तले खरबनी को कनानो अय्या इपु इनाउ तो नर्सिंग योरक त्रिबरा सनाया थं मैं तेले पाकी पाव सुलोर कनी हरम बनी महाराज इपु पाव अदुत तनिंदुना लंतक ननंगायरी बनी कुंभो मिनोट की पाव ना कमदो खरवा ऐ पोथावं खंग्रे ने पु
1: आई नहीं गई था मनाओ ही पुंगो दी यो बुगे रोग ले आई गा
0: इनाउ तो नर्सिंग यो रोग ले दना
2: यंबु
0: कंपनी की करी पो
2: सिटी सीमा यंबु सना खुदा कल ही
0: हाँ सिटी
2: करी हारी बनो यंबु
0: शेरी नाउ तोन जेनरेन साहेब ने खंगलग दी लान चंग दबले रबदी हयिंग एव की पुंग तरा तावम तमदा चंगबीरो हाय रख दी
2: यांबु
0: मैं ते ही ले पाक खुंताक लब मतम मचिदा निथेम हिरा चंद्र हाय बा मना मैं ते ही चिंगी पाकं खरगा ताकू तेंगो लम चंगली हाय नताय
2: यांबु
0: मखोई ने तौरी बदो थागत निगाने सचिन अवतोन
2: फागनी यांबु
0: बंगाली केरानी दो हो जुम उनर सिला सच
2: सलसे यांबु

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
0: ताजरी हाई बीयू मिंग लेफ्ट हम हाई बीयू
2: हेलो हेलो
0: हेलो ताजरी हाई बीयू मिंग लेफ्ट हम हाई बीयू कॉल तो बिरख लीसी गुड आफ्टरनून मिंग लेफ्ट हम हाई बीयू
2: आफ्टरनून
0: अलग दिन की खाई आई जी बनी जी का खाने के अलग चुम्मे अधूम की
2: मोहिनी
0: से करी लमदगी
2: ताजरी
0: करी करी वफम सिंह थम्बिनिंग मोहिनी ताजरी गुड आफ्टरनून लेडीज कॉल तो भीरकपसे करी फौबीगे पुक्निंगदा फंगबनेबा अनौब कॉलर मखक वरी सानबगी तंजा फंगजब अदुकिमतिक नुंगाइजे ताबिरिको याबिरब्रा मयामगी प्लेटफॉर्म ओइरबनिना मोहिनी फोंदो पिरकमा मतमदा मयाम पुन्ना ताबे याबा नुंगाइबिनबे याबा अदुम वाफम सिंग पुनिंग लोसिंग ओइबे याबा सिंग अदुम ओइने फोंदो पिरो हाइजेगे वफम तंग हाइजेगे मोहिनी ऑल इंडिया रेडियो लेजरीब प्लेटफॉर्म से मयाम की दमक्त लेजबनी खुदम हाइजरबदा वारब मतम चोक्थब लेतन होनजरीब मयाम से मयाम की थवाई खजिक तोरिसु नुंगाइहनब वाखल नुंगाइथोहनब हाइबदी नुंगाइतब थौदोक सिंग सिंग मरकता नुंगाइथोहनब होनजरीबनी अदुना अदुमदो गाक्तन काउथोपिरगा वाखल नुंगाइब वफम लोमदा चंगसिन बिरगा अदुम बयना वफम जे फोंदोपिनब निसिंजरी अदु हौजे हौजे करी करी होनबिरिगे मोहिनी मोहिनी नहाइनगाइनगाइनगाइनबी खेनबसे कमाई कमाई तौवी नुंगाइबगी महाउसने कम तौवी वारी साहेब एतंग अमतंग हाइबिरगदी नुंगाइजगनी मयाम
2: ना खाई ना दी
0: मोहिनी से करी लम्गी निंगोल ओइबिरबनो इपामद लैरिंगै मतमगा मौ ओइरकपा मतमसिगद खेनबसे कमाई कमाई तरकपा अदुगी मतांगदसु खजिकतंग थंबियो यू पानी मैं पुनः लेमीनबद चंगी।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून मिंगले फ्रॉम हाईव्यू
1: हेलो मिंगले फ्रॉम नारुपुंगडोंग मंगदेगी मामोमोने दा
0: नाहारुपतेगी मिंगडोंग तंग हाईव्यू
1: मोमोने
0: मोमोन हाईव्यू
1: इमा
0: होय होय दाबिरिको
1: दादा
0: मोमोन हाईबी यू के वफन सिंथ मीनिंग बा
1: सिथांग को उता देबा तो आई कैसे फिरो को थमजारो अदुबा आई गेबो नु छा या न छा बते खांग बंग मंदे जना होय तो मेदांग मेदांग फंसे जे ताजनिंग बा

नमस्कार कुरुमजरी, मैं निंगथोकुंगजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

दोस्तों आज गीत माला में आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही रूप। भारतीय सिनेमा के जबरदस्त गायिकाओं में से एक माने जाने वाली कृष्णा नायर शांत कुमारी चित्रा, जिन्हें हम केस चित्रा या चित्रा के नाम से संबोधित करते हैं, आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उनके कुछ चुनिंदा गीत। चित्रा एक पार्श्व गायिका और कर्नाटक संगीत गायिका है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म रोजा से, के एस चित्रा और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में।

दोस्तों, अपनी गायन प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध चित्रा को व्यापक रूप से भारत की स्वर्णिम आवाज के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये उपाधि उन्हें 2001 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल द्वारा प्रदान की गई थी। टाइम्स ग्रुप ने 2016 में उन्हें भारतीय सिनेमा की मधुरानी के रूप में सम्मानित किया। उन्हें भारतीय सिनेमा की छोटी कोकिला, दक्षिण भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं अगला गीत बॉम्बे से।

दोस्तों चित्रा को पद्मश्री से नवाजा गया, वही पद्मभूषण से भी। इन्हें 6 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कारों की लिस्ट भी बहुत लंबी है। आइए सुनते हैं अगला गीत उस्ताद सुतलान खान के साथ चित्रा की आवाज़ में।

दोस्तों, के एस चित्रा पहली भारतीय महिला रही है जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट की हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अशोका से।

0: ngasigi oinadi khumgangi thorum sandokchaba matangasida loijeri.
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: संगीत नाटक अकादमी अवार्डी गुरु सापम कुलबी सिंह मसागी चही चाम अम हेलबन लुचिंगदुना लागली बजुन की तांग तरा मरीदा गुरु असगे पोनफम लांगथवा लेप अवंग लेकै इम्फाल वेस्टा नट संगीतन बु योकट पगी थौदांग वइना पुंगयाम येबगी थौरम म पांगथोक जगनी थौरमसी यूसीएल वाईपीयू अमदि सापम फैमिली ट्रस्ट न पुन्न सिन लांगले थौरमसी बु इरमदम असगे नट संगीतन बु थवाय हापीरी ब पुमन मकना सरुग्या बिनबा सेंजे लांगजेरी ब सिंगी माइकै देगी पाउजे jadi thauramasigi mangoinana guru asina handakta asia book of record holder oibirakpa sibo ikai khumnaba utpa tongan tongan ba award kaya lanthokpa amadi guru asina ithokchaba laire madumel mamang maning hauba haina mingthon ba lairik amasu phong jegane
0: adombe thauram tabiri ba si akas bani imphal ni Sata Zariba Thauram Pareng Asigi Pung Nipal Tahan Jagani Radio Lila Nungshi Laipul Aroiba Sharuk Lila Sanabigadabana Manipuri Theater Academy Pung Nipal Makhaida Sandok Jagani Naharolgi Khonjil Ngasigi Thauramda Tahan Jagani Phonim Pregamda Ngasigi Guest on the Lengshin Bigidabina, Pinky Saikom, folk artist Amadi, actor. Nuidang Pung Mapal Makaida, Tamjari, Mai Pak Labalongmi, Thoromasida, Sareng Yokpada Mai Pak Labalongmi, Ibocho, Tiamgo Unoduna, Warishaba, Unabigadaba, M.M. Sanayai. Agas Bani Imphal, Aujinumidangi Pung Tarit Makaitari, Manipurida Pau Tavirashi.

0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯄꯔꯤꯡꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯇ꯭ꯔ, ꯇꯨꯀꯥꯟꯐꯝꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯇꯣꯡꯕꯝ ꯚꯨꯕꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯗꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕ ꯁꯤꯡ, ꯌꯥꯝꯕꯨꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯏꯕꯦꯝꯄꯤꯁꯛ ꯗꯦꯕꯤ, ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯏꯕꯣꯇꯣꯝꯕꯤ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯗꯒꯤ ꯑꯏꯕꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯊꯣꯛꯄꯅꯤ. ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ. ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ NDA ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯥꯁꯟ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯆꯍꯤ 12 ꯁꯨꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ PM ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯤꯇꯔ ꯁꯂꯥꯝꯒ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯗꯦꯛꯁ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯒꯪꯒꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ.
1: ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯗ 45 ꯔꯣꯝꯗꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤ. ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯁ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯦꯗꯦꯗ ꯑꯃꯗꯤ GDP ꯆꯥꯗ 15%ꯗꯒꯤ 18% ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯤ. ꯆꯍꯤ 12 ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ NDA ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2018ꯒꯤ December 1 ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ PM ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯁꯝꯃꯥꯟ ꯅꯤꯙꯤ, ꯃꯌꯥꯝꯅ PM ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ. PM ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯕꯤꯚꯥꯒꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯄꯤꯇꯔ ꯁꯂꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ.
2: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯅꯪꯒ. PM ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ PM ꯀꯤꯁꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯧꯕꯤꯔꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ.
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ, ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯁꯥꯔ?
2: PM ꯀꯤꯁꯥꯟꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, PM ꯀꯤꯁꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ, ꯐꯥꯔꯃꯔꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ, ꯏꯟꯀꯝ ꯗꯕꯜ ꯇꯧꯅꯕ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯂꯤꯍꯨꯗ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ PM ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ. ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯨꯂꯞ 100% ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯅꯤ. ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ, ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯦ 6,000 ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯀꯣ 2,200-2,300 ꯄꯤꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ 6,000 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗꯗꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ, ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ, ꯃꯥꯏ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯩꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ. ꯑꯗꯨꯕꯨ PM ꯀꯤꯁꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯊꯅꯥꯟ ꯊꯧꯕ ꯀꯕꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯆꯤꯊꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯦ ꯄꯣꯠ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ, ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯕꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ 6,000-6,000 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯦ ꯃꯤꯡꯈꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯅꯤ.
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ PM ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯗꯣꯛꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯥꯔꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ, ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯁꯥꯔ.
2: ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ 6,000-6,000 ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ. ꯂꯝ ꯑꯣꯅꯔꯁꯤꯞ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯂꯧ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ 6,000-6,000 ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕꯅꯤ. ꯏꯟꯁꯇꯣꯜꯃꯦꯟꯠ 3 ꯄꯤꯒꯅꯤ, 2,000 3-4 ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ. ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯄꯤꯕꯁꯤꯁꂨ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯕꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯂꯩꯕꯝ ꯆꯪꯉꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯑꯣꯏꯕꯝ ꯆꯪꯉꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯅ 2019 February 1 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯝ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒ꿤 ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯅꯤꯍꯨꯝꯁꯦ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯕ, ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒ꿤 ꯂꯝ ꯂꯩꯖꯔꯕ, ꯂꯝ ꯑꯁꯤ February 1, 2019 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ, masa farmer oiraba adu oita lagadi masigi haiba benefit asi loba yare aduga india government na masigi matakta exclusion criteria haina kharpirei haidi low lejera ga su phangba yadaba haitare ko asina kari oige haibadi han hanbada institutional land holder hai institutional land holder haibadi masagi farmer na tabako NGO kumba company kumba na su lobham moi baminda leba samyam yauri adu mam phangba yadre Number two, the khoygi constitutional post holder. Hojiji constitution gi mayam post mayam lady ko. Adugumba post. Hojiji. Constitutional post hai diya khoygi president le re ko. Adugumba chokchokwa post hai ta re ne ko.
1: Khoy.
2: Aduna moi hojiji su oiri ba na traga hana oiram ba. Adugumba post oira ga di moi adum ke nontok boi adre. Adau boi adre si gi benefit si aduga minister, MLA, MP, adagi mayor, chairperson mayam, adagi official mayam. Adudagi income tax thiba mi haitare aduga pensioner sisu pension che do palisin tara de hen ga dabo ko lising tara gi makaw ra gi lobai ai
1: per month
2: aduga hariba asigi professional me amo ko doctor engineer lawyer architect chartered accountant chu me am sisu yadre hariba government gi employee yadi har ga su multitasking staff mts kumba class 4 staff group d employee kumba asium ba sidi lobai ai aduna sina chaurakpa khoygi scheme asi kana kana na phangbiyai kana kana na phangbiya di haibagi atui matang dane
1: aduga hoje ke scheme asi gi oina punna yeng ba matam da leba asi gi haid bharat ke oina punna yeng ba matam da ja hoje phawgo da beneficiary ke amuk laire aduga sarkar na asi scheme sigi da makta ke amuk yam na hoje phawgo da so far ani beneficiary sing da sarkar na moi ki miteng pangbi khraba ge haibagi matang da supanbi
2: scheme asi 2018 da gi hobani ngasai mamang da panbi khre aduga manipur yo 2019 da ki masigi kanaba hungba hauki hauji phawbada installment kuni thoi chure tha mari mari khuding installment mam pi bani lising ani ni gi ko adu installment hauji pota kuni thoi chure july tha da kulum doi chuba installment pi gani kuni thoi installment chi da all india gi figure yam chaw khre aduga manipur yo na specific nai haje ge hauji pota crore lising ama ga taru 1006 crore phawba manipur gi farmer mayam da scheme chigi makhada dpd gi through da haita kuthang da asigi kanaba pi khre hauji phokta manipur da khoi gi farmer register tawri si 590000 ni 590000 chigi marak chida khoi gi eligible oidaba adugumba masana register tawbada yami sina kai gi no haibada masana gi masi ha bai horpada scheme chi horpada voluntary registration oiba voluntary registration oi aduga india government gi scheme gi guideline gi makhada ahan registration tawbasida aadhar su aadhar gi requirement su yaudaba lamgi patagi requirements de itaba and scheme je yamna ha bahorok pada yamna voluntary scheme na torame aduna farmer sing sina voluntarily hoi aadhar document adegi lamgi document yaudabita prestato silok pagi adum bagi cases khara laikre masida masi yamna khoi voluntary oiba scheme haitare yamna positive oina every farmer ko dingi phamam thopani na adum da changchil laga tobe scheme oina pulap hekta khoi farmer se phangadam ni na tobasida manipur gi oina lak manga ga lising maudrani thoi asimu register tauki adubu scheme se sum mata mata matungi na sum evolve tor pa hidare matu ha bo horok pada smain tor ga su khara le ga aadhar gi requirement la kare aadhar update tor ona mu haire adada gi aadhar update tok da gi hoji khara pending da khara thami adada gi khara le ga hoji che lam gi document che mo register ab adu sum upload tobi ona mu haire aduna hoji che lam gi update to basi hoji lising drama thoi bokti khoi update tore aduga hariba lamgi update tau dabasi hoji hoji hol taro ga thami dia government haidi moito kapna te lam hek update tau baga benefit se phangada aduna ngarang ta khoi gi agriculture department na press note am su issue tau ja khare hoji hoji khoi gi jun gi tang tram nga dai hogada ba khoi gi fertilizer distribution program haitare mamang che issue tau ja khare mamang che hida di khoi gi har gi issue se kari problem lai gi haba da khoi gi head officer khang yen ba district head officer khang yen ba sina farmer me am che la ga matam su nung dang dang ga lek tan ga tong na ba si awi qiu se am sang na le pa matam se hol de no num nu mi chu pom mang ba nu mi chu pom lai qiu le pa ga har se phang dab ta gi an wan taw ra ga farmer me am gi matam se am mang ba at de gi khoi chaung na ba si am thok ba at de ma mang che hi de gi di khoi gi agriculture department na khoi program chin jara ga khong khong khong chat la ga hai ta re central location chat la ga har si door step ta phangan ba gi du ma program pa kha chari hari ba hojiki door step ta every khoi gi club kumbam da mopam mopam cha bam da club kumachala ga khoina har hi thopgi program je na ki tang tramanga जून की तंग ट्राम आदि हो रही ना कोई पब्लिसिटी खर्च तो जा करे ओल इंडिया ले तो ना सुलाख थोपी करे अतो ना सिंगी हो बसी दा होजी की हरी वो कोई ना लेकाय लेकाय खुदिंगी क्लब क्लब खुदिंगी तो वो तब केम ची दा कोई की पीएम किसान की डेस्क अमम सेटअप तो गनी है ना गरांग मक कोई की ओल इंडिया ले तो जो कोई खर पंगो पियो है ना को कोई हाइजे की बनी पाव दसु खबर दसु सोशल मीडिया दसु कोई खर संदूक चली अतो ना हरी बा कोई की होजी की लेकाय लेकाय खुदिंगी हारिन थोप की प्रोग्राम से डेस्क अमम पीएम किसान की सेटअप तो रगा लाख फार्मर सिंह से कोई पीएम किसान रजिस्टर तब ओरगदी मागी लमगा लम पतागा आधार अमम तंग पीबीरमो है ना कोई खबर प्रेस नोट तो खरे अब फार्मर लाख खुदिंग कोई स्टाफ मैम फार्मर मैम कोई रिक्वेस्ट तौजगनी पतागा आधार पीबीरमो अदरगदी हेक अदुगी पोतो हेक पीरपगा कोई कंटिन्यूअसली होजी अपडेट तौरगा हैतारे माना फ्रीज तौर
1: लेरब
2: फ्रीज तौर लेरब पैसा अखोय पी एम किसान मासे लम पता अपडेट तौदबदगी मागी फ्रीज तौर लेबदो मधु रिलीज तौर मधु थादोकनाबा हैतारे होजिक लिसिंग त्रामाथोय खक अखोय बेनिफिशरी मैम अखोय पी एम किसान की बेनिफिशरी लिसिंग त्रामाथोय खक लम डॉक्यूमेंट पिसलपतंगाइरी मसी अखोयना कमाई तौगे हैबदा पी एम किसान की ओइना तोंगाना हेक केम तौरबदा ममांग खर तौजरुरे अदुदा फार्मर मैम की थुलकपगी चांग सियाम हंधाबाय तारे पी एम किसान की डॉक्यूमेंट पिसन बिउ हायरगदि हे हंधाबा अदुना हारी थोपगी टाइमिंग से ओइरगदि हारी थोपगी दि फार्मर मैम से ओइ थुलकदमनि ना सिगी तंजाम लौरगा अखोय पी एम किसान की एवरी अखोय की हारी थोपगी लोकेशन खुदिंग की डेस्क कमम अखोय दुगी छिनबगी लैनबक सेम साबा लोइरे अदुगी पब्लिसिटी सुखर तौजखरे

0: कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं?
1: तुमने तो मुझे बुलाया था।
0: मैंने? आपकी तबीयत तो ठीक है, मैंने कब बुलाया आपको?
1: यही कुछ 9 या 10 साल पहले। बड़ी जल्दी भूल गई आप।
0: 9-10 साल पहले
1: तब मैंने कहा था कि अगर सब प्रोग्राम करेंगे तो देखेगा कौन। माफ करना सूफी, मुझे आने में जरा देर हो गई।

0: ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯥꯅꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥ ꯚꯣꯁꯂꯦ꯫ ꯏꯁꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯔꯛꯏ, ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯃꯪꯍꯜꯂꯤ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯊꯝꯃꯣꯏ, ꯋꯥꯔꯕ ꯋꯥꯈꯜꯕꯨꯁꯨ ꯄꯣꯊꯥꯍꯜꯂꯤ꯫
1: I love you. I love you. Kiran.
2: वाह, क्या तेवर है सुनील के आने का।

10:30 हो चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्वागत है आप सबका प्रोग्राम हर सिंगार में। आपके साथ मैं विकास। नमस्कार।

आराधना फिल्म का ये गीत और किशोरदा की आवाज लता मंगेशकर की जोड़ी थी इस गीत में। पर्दे पर शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की खूबसूरत सी एक और जोड़ी नजर आती है, लेकिन इस गीत को कुछ और भी खूबसूरत बनाता है। धुन और बोल तो इस गीत के प्लस पॉइंट हैं ही, लेकिन इस गीत में नजर आने वाली वादियां और खूबसूरत से पहाड़ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग पहाड़ों को मिस करते हैं, या पहाड़ों पर जब भी जाना होता है तो बस कुछ न कुछ अपने साथ समेट कर लाना चाहते हैं। मेरा भी बीते दिनों जाना हुआ पहाड़ों पर, कैसा रहा मेरा अनुभव वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक गीत पहुंचता है आप तक। फिल्म का नाम है मेरा साया। 1966 की ये खूबसूरत सी फिल्म खूबसूरत से संगीत के साथ।

बीते दिनों जाना हुआ मेरा पहाड़ों पर, बादलों को जितना जी भर कर देख सकता था, बर्फ से ढकी कुछ कुछ ऊंची चोटियों को जितना निहार सकता था, उससे कम ही देख पाने का मलाल है। घर पहुंचने के बाद ख्याल आया कि किसी ऊंचाई पर बैठकर एक टक अच्छे से थोड़ा सा और देखना चाहिए था पर्वत के शांत व्यक्तित्व को, उसकी बहुत सी प्राचीन घास पर लेटकर खुद को थोड़ा सा और तरोताजा करना था। बर्फ से ढकी कुछ कुछ ऊंची चोटियों को जितना निहार सकता था, उससे कम ही देख पाने का मलाल रहा। जी, कई दफा हमारे साथ ऐसा ही होता है, जैसे ही हम पहाड़ों के बीच में जाते हैं, अपने पुराने जगह को कुछ देर के लिए ही सही लेकिन भूल जाना चाहते हैं और चाहते हैं उस पहाड़ को एक टक निहारना, उस पहाड़ को जो किसी ऋषि की तरह न जाने कितने बरसों से एक टक निहार रहा है अपने आसपास को।

पीढ़ी के लेखक सौरभ अनंत अपनी एक कविता में लिखते हैं कि यात्राएं पहाड़ों के स्वप्न देखती हैं, पहाड़ यात्राओं के, नदी रेलगाड़ी में अकेली बैठी पुल पार करने के स्वप्न देखती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हुए आप प्रोग्राम हर सिंगार आपके साथ इस सफर में मैं विकास।

पर्वत को याद करते हुए धर्मेश लिखते हैं कि मैंने तुमसे मांगा प्रेम जैसे चिड़ियों ने मांगे पेड़ों से घर, तुमने रख दिया था अपना हाथ मेरे कंधे पर जैसे नदियों ने रखा मछलियों के लिए जल, तुम्हारे हृदय पर ठहरा रहा मेरा माथा जैसे धरती पर ठहरते हैं पर्वत। प्रोग्राम का आखिरी गीत, थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ यानी FM गोल्ड।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट

0: आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट श्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर
1: नमस्कार 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
2: नमस्कार।
1: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
2: देखो 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आस है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी वो सब लड़ते थे इलेक्शन, उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने। लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए, एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
2: देखिए हमारा कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उस पर दिखता है और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले ही उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
2: देखिए उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
2: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंस मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर

0: लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
1: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद ही 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
0: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था। आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
1: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुँच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं और वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था, केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने PKC की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं।

0: तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहाँ की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं, आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहा, वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुँच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी, उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती, वो पूरी देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहाँ पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बातें नहीं हो सकती, और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई

0: गलत कुछ बता भी नहीं सकता, और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी, वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवा डांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं, तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, लगा सॉरी सर, उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है, मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है, मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे हम, जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूँगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था, और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है, कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया, मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्र से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो भी खो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे, बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं, और युवाओं के लिए

0: उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊँगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड PM ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया CR पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे हैं, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबीक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और CEO विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर से उठाए और बिजनेस बनाया। तब

0: से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है, उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो UPI का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
1: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा, उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
0: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है, तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी, जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल DPI कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता, और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने?
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुल सकता, तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहाँ पे हो गया। इस तरह की सुविधा

0: था हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
0: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरे डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की, आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

11:45 हो चुके हैं. आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप. आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत. प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत आपके साथ इस खूबसूरत से गुलदस्ते में कुछ फूल लेकर मैं आया हूँ आपका साथी विकास.

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत आई मिलन की बेला फिल्म से लता जी की आवाज में, और विकास अब आपसे चाहता है इजाजत इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड गेफ्रे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, एल्प्स मैरीटाइम्स प्रीफेक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसो एडब्ले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सियोटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट श्नाइडर शामिल थे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान

0: दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ पक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ओर से ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी हेड पोस्ट ऑफिस और रहधर ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बीच शुरू की गई। ये पहल केंद्रीय मंत्री की ग्रामीण डाक सेवकों और डाक सहायकों के साथ बातचीत के दौरान मिले फीडबैक पर आधारित है, जिसमें दूर दराज और मुश्किल इलाकों में तेज और बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत पर जोर दिया गया था। अमेरिका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत के लिए डेब्यू करने वाले हर्ष दुबे और गुरनूर बड़ार ने 3-3 विकेट लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of a 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. The Prime Minister will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron today. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia today. Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज मंजू। शुरू हो चुका है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी, जिसमें आज मैं सुनाने जा रही हूं अपने ही कलम से सजी कहानी, अपनी ही जुबानी पानी पर लिखी कहानी आवाजों के साए। प्रस्तुति है रश्मि कुकरीती की। कहानी की शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ।

स्टेज पर पलक की तस्वीर की बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। ऑडियंस उसके सम्मान में तालियां बजा रही थी। पलक को आज बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलने वाला है। पलक खुश है, उदास है या फिर भावहीन, इसका अंदाजा वह खुद भी नहीं लगा पा रही थी। अपने जिस गीत के लिए उसे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलना था, वो उसे स्टेज पर परफॉर्म भी करना है। पर्पल कलर का गाउन, हाथ में चमकदार ब्रेसलेट और गले में मोतियों का हार। स्टेज पर खड़ी पलक किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बहुत ही मीठी आवाज में पलक ने गाना शुरू किया।

की आवाज लोगों के दिल में उतरती जा रही थी। कोई इंसान अपनी आवाज में इतनी खनक और पीड़ा कैसे भर देता है कि वो रूह में उतर जाता है। लोगों की वाहवाही के बीच पलक सिर्फ शब्दों और संगीत को महसूस कर रही थी। जैसे ही पलक ने गाना बंद किया, कई फ्लैश उस पर चमक उठे। मैम सामने देखिए, स्माइल प्लीज। पलक स्टेज के नीचे अपने सहयोगियों को देख रही थी, जिसमें गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म के हीरो हीरोइन सभी उसके सम्मान में तालियां बजा रहे थे। ऑडियंस में एक चेहरे पर पलक की पलकें ठहर गई। विनीत? नहीं नहीं, ये विनीत नहीं हो सकता, ये विनीत ही था। विनीत को देखकर उसका दिल धक सा रह गया।

पलक अतीत की स्मृतियों में खो गई। उसे याद आ रहा था कॉलेज का वो पहला दिन, कितनी डरी और सहमी हुई थी वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। सारे प्रोग्राम में उसे एक लड़के द्वारा पढ़ा हुआ गीत सबसे ज्यादा पसंद आया था और वो मन ही मन सोच रही थी कि काश इस गीत को गाकर पेश किया जाता तो उसके भाव और भी उभर सकते थे। पलक ने जैसे तैसे करके विनीत के बारे में जानकारी जुटाई। विनीत हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट है और उसे गीत और कविताएं लिखने का शौक है। पलक ने एक दिन रिक्वेस्ट करके विनीत से उसका गीत मांगा और शर्माते हुए पूछा, क्या आप मुझे अपना गीत कॉलेज फेस्ट में गाने की इजाजत देंगे? और विनीत ने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी।

कॉलेज फेस्ट में पलक की आवाज ने धूम मचा दी। कॉलेज में सभी पलक को जानने लगे थे। धीरे धीरे पलक और विनीत एक दूसरे के नजदीक आने लगे और ये नजदीकी गहरी दोस्ती में बदल गई। पलक को कल्पना की दुनिया में रहना अच्छा लगता था। वह खुद को और विनीत को लेकर बड़े बड़े ख्वाब बुनती थी कि विनीत बहुत बड़ा गीतकार बनेगा और वो एक बेहतरीन सिंगर, जबकि विनीत को यथार्थ की दुनिया ही अच्छी लगती थी। वह अपने लेखन को शौक से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। उसका सपना था कि वह जल्द से जल्द UPSC क्रैक करके एक बेहतरीन और बड़ा अफसर बने। पलक विनीत का साथ पाकर बहुत खुश थी। उसे ऐसा लगता था कि उसने सारे जहां भर की खुशियां अपनी झोली में समेट ली है।

कॉलेज का आखिरी दिन था, सभी बिछड़ रहे थे, पलक और विनीत भी उदास थे। विनीत अपने होम टाउन कानपुर अपनी माँ के पास जा रहा था। उसने कहा था कि हम टच में रहेंगे और फोन करते रहेंगे, पर कानपुर जाने के बाद विनीत के बिहेवियर में एक अलग सा बदलाव आने लगा था। विनीत ना जाने क्यों अब पलक से बचने लगा था, उसके फोन कॉल्स और मैसेजेस के जवाब भी कम ही देने लगा। पलक सोच रही थी कि जिस फोन का इंतजार विनीत को हमेशा रहता, जिस फोन से विनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती थी, जिस फोन को विनीत अपनी कमाई कहा करता था, वह फोन अब सबसे आखिरी जरूरत क्यों बनता जा रहा था। पलक का दिमाग सैकड़ों सवाल बुनने लगा, वह अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। उसकी सुबह सवालों के बवंडर से शुरू होती, जिसे वे रात तक आते आते इंतजार जैसे बोझिल

101 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज मंजू। कागज पर लिखी कहानी में आज मैं सुना रही हूं अपनी ही कलम से सजी कहानी आवाजों के साए, जिसमें मैंने अब तक आपको बताया सुनाया कि पलक को आज बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलने वाला है। पलक एक ऐसी लड़की है जो बहुत भावुक है और जिसे कल्पना की दुनिया में रहना अच्छा लगता है। स्टेज पर खड़ी पलक ऑडियंस में विनीत का चेहरा देखकर अतीत की स्मृतियों में चली जाती है, जब वो दोनों कॉलेज स्टूडेंट थे और दोनों में गहरी दोस्ती थी। अपने होम टाउन कानपुर जाने के बाद विनीत का बिहेवियर बदलने लगता है और कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, आप हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। नंबर एक बार फिर से 9868868753 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है fmgoldair@gmail.com पर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पलक को भी लग रहा था कि उसका इंतजार सलामत रहेगा, पर ऐसा ना हो सका। विनीत का नंबर अब नॉट रीचेबल आने लगा। दिन, सप्ताह, महीने, साल बीतते गए, पर विनीत की कहीं से कोई खबर नहीं आई। पलक का दर्द बर्फ की तरह जमने लगा था। अपने दोस्तों और परिवार वालों के बहुत समझाने पर पलक एक सिंगर बनने का ख्वाब लेकर मुंबई चली गई और संघर्ष करने लगी। धीरे धीरे पलक की जिंदगी ट्रैक पर आने लगी। एक दिन रिकॉर्डिंग के बाद पलक घर लौट रही थी। उसने फेसबुक पर विनीत के शादी के फोटोग्राफ देखे। उसे लगा कि शायद उसकी सांसें थम गई हैं, उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। आवाज से मानो शब्द छीन लिए हैं, संगीत से मानो सुर छीन लिए हों, और पलक को अपना अस्तित्व ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी जिंदगी की गूंज छीन ली हो। एक अनंत सन्नाटा उसकी आंखों के आगे पसर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।

उसने लैपटॉप को तो शटडाउन कर दिया, मगर अपने दिमाग को शटडाउन कैसे करती। कांपते हाथों से पलक ने विनीत का नंबर मिला दिया। विनीत का मोबाइल रिंग कर रहा था। पलक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उधर से आवाज आई, हेलो कौन? हेलो विनीत, मैं पलक। हाय पलक, कैसी हो? अच्छी हूँ, शादी के लिए बधाई विनीत। थैंक यू पलक, मुझे मालूम था कि तुम मुझे फोन जरूर करोगी। चलो एक बार फिर मैं तुम्हारी उम्मीद पर खरी उतरी। पलक ने गहरी सांस भरते हुए विनीत क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या कमी थी मेरे प्यार में? ओहो पलक, तुम अभी भी उस प्यार में उलझी हुई हो? वो टीन एज थी बाबा, तुम अपने कल्पनाओं की दुनिया से बाहर क्यों नहीं आती? तुम आज भी फैंटेसी में जीती हो। मुझे लगता है कि तुमसे ब्रेकअप करके मैंने बहुत अच्छा किया। जिंदगी कल्पनाओं के सहारे नहीं चलती, उसके यथार्थ को स्वीकारना जरूरी होता है। मेरी भी अपनी इच्छाएं थी, मैं भी ऐशोआराम की जिंदगी जीना चाहता था, मुझे भी समाज में रुतबा चाहिए था, और फिर तुम जैसी स्टेज पर गाने वाली को मेरी माँ भी तो स्वीकार नहीं करती। माधवी मूव ऑन करो, एक सलाह दूं, बी प्रैक्टिकल एंड मैच्योर। कहते हुए विनीत ने फोन काट

अलग सिर्फ बॉलीवुड में सिंगर बनना चाहती थी, पर इस वक्त उसके कानों में सिर्फ विनीत के शब्द गूंज रहे थे, बी प्रैक्टिकल एंड मैच्योर। पलक ने यह ठान लिया था कि वो अब दिखा देगी और वो अब अपनी आवाज के सहारे ही अपनी आवाज को एक नई पहचान देगी।

म्यूजिक डायरेक्टर ने स्टूडियो में एड जिंगल की रिकॉर्डिंग शुरू की। पलक जी, फील इट, महसूस करिए, बहुत फ्लैट गा रही हैं आप। एक बार फिर कोशिश करते हैं, पर सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही थी। मैम, आपसे नहीं होगा। झल्लाता हुआ म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकल आया। स्टूडियो के बाहर रवि जोशी अपने किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे थे। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, वो मैडम तो कुछ गा ही नहीं पा रही है। आप तो कह रहे थे कि वो शब्दों की को बहुत गहराई से महसूस करके गाती हैं। मुझे तो कोई बात नजर नहीं आती। सर, अब आप ही कुछ कीजिए। रवि जोशी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। और वह सीधे रिकॉर्डिंग रूम में चले गए, जहाँ पलक डरी और सहमी हुई बैठी थी। पलक जी, रिलैक्स। रवि जी, क्या मैं बेसुरा गा रही हूँ? नहीं। क्या स्केल में नहीं गा रही मैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या कमी है? भाव, भाव नहीं है आपकी आवाज में। ऐसा लगा मानो किसी ने पलक को बहुत भीतर तक झिंझोड़ दिया। पलक के भीतर कुछ पिघल रहा था, शायद भाव की वही नदी जिसकी इस एड जिंगल को जरूरत थी। पलक एड जिंगल के साथ साथ रवि जोशी द्वारा लिखे गीत भी गाने लगी थी।

पलक, एक प्यारी सी परिचित आवाज ने उसकी स्मृतियों के पुल को तोड़ दिया। बाबा वोट तो ले लिया, कुछ बोलूंगी भी न जाने क्या सोच रही हो। ओ ये तो रवि की आवाज है, ये रवि की आवाज है। ये वो रवि ही था जिसने पलक की आवाज के सैंपल को बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंचाया था, बल्कि उसको मिलवाया भी था। आज जिस गीत के लिए पलक को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल रहा था, उसका गीतकार कोई और नहीं बल्कि रवि ही था। पलक ने ऑडियंस को थैंक यू कहा और जल्दी जल्दी स्टेज से नीचे उतरने लगी। किसी चीखती आवाज ने पलक के कदमों को रोक लिया। पलक मैम, आपको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपके कई लाइव कॉन्सर्ट देखे हैं, सोशल मीडिया पर आपकी बहुत सी वीडियोस देखे हैं। मैंने कई बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, पर कभी आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। मैम ये विनीत शर्मा हैं, मेरे हस्बैंड, इन्हें भी आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैम ये भी बहुत सुंदर गीत लिखते हैं, क्या आप इनके गीतों को आवाज़ दोगे? पलक ने विनीत की तरफ देखा और विनीत ने जमीन की तरफ, मानो किसी पाताल में उतर जाना चाहता हो। पलक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। पलक ने डर के मारे रवि का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया था और उसकी आंखें भराई थी। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, पलक, मिसिस विनीत ने तुम्हारी आवाज को मांगा है बाबा, तुम्हें नहीं। दोनों अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे। पलक अपने दुख के आगे बेबस होती जा रही थी। रवि ने उसे गले लगा लिया। वो रोते जा रही थी, वो कह रही थी, रवि मैं तुम्हें नहीं समझा सकती और ना ही मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। रवि मन ही मन सोच रहा था कि पलक के मन की ये कौन सी परत है जिसे उसकी कलम भी नहीं छू पाई है। रवि सवालों के खंडहरों में उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि खंडहर हमें अतीत तो बताते हैं पर उसमें कभी घर नहीं बसाया जा सकता। रवि एक घर बनाना चाहता था जो आबाद रहे। कार का गेट खोलते हुए रवि ने कहा, मैडम मैंने कितनी बार कहा है, सिर्फ तुम्हारे आंसू मुझे शायर बना देते हैं, पर मैं आज कोई गजल नहीं लिखना चाहता। ये कहकर रवि ने अपना हाथ पलक की ओर बढ़ा दिया।

अब मुझे पानी पर लिखी कहानी समेटने की दीजिए इजाजत, जो लिखी थी मैंने ही और मेरी ही जुबानी आपने सुनी, जिसकी प्रस्तुत करता थी रश्मि कुकरेती जी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे, संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे अधिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया है कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है, जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। कल बेंगलुरु में CSIR RISE कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक मदद मिलेगी। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और कॉन्सुलर सेवाओं को संभालने वाले आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। उस तारीख से भारतीय पासपोर्ट, वीजा और कॉन्सुलर सेवाओं के लिए सभी आवेदन अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स द्वारा संचालित तय केंद्रों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे 1 जुलाई से पहले जमा किए जाने वाले सभी आवेदनों के लिए मौजूदा BLS इंटरनेशनल और SGIVS ग्लोबल केंद्रों का उपयोग जारी रखें और बदलाव से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणाओं का पालन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by Mehwish Fatima. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron today. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event. Upon arrival, Mr. Modi received a warm and enthusiastic welcome from members of the Indian diaspora at Hotel Negresco. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi was accorded a vibrant community reception in Nice, where members of the Indian diaspora gathered in large numbers to welcome him. The Prime Minister also witnessed colorful performances featuring classical Indian dance forms such as Kathak, Odissi and Bharatanatyam, presented by French and Italian artists. Today at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron will jointly launch Bharat Innovates, a flagship platform showcasing India's innovation and startup ecosystem. The two leaders will also hold bilateral talks to review cooperation in key sectors including technology, defense, innovation and strategic affairs. From France, the Prime Minister will travel to Slovakia for the second leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashwani News, Nice, France.
2: Prime Minister Narendra Modi thanked the Indian diaspora in Nice, France for the warm welcome accorded to him. In a social media post, Mr. Modi described the gesture as memorable. He emphasized that despite being several kilometers away from home, the bond of the Indian diaspora with India remains as strong as ever. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agriculture.

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ 1:11 हुए हैं और इस वक्त गीत सुहाने उन गीतों की बहार आपके लिए जो सचमुच आपके दिल को सुहा जाए आपके मन को भा जाए और आपके दिलो दिमाग पर छा जाए कोशिश पूरी रहेगी रात के इस सफर में दिल की गहराइयों में कोई उतरे मन मस्तिष्क में बनी तस्वीर में कोई सवरे या फिर इसके उलट दिल में चुभे नश्तर पर कोई मरहम की तरह एहसास बन जाए या फिर दिल की चुभन दर्द कोई जख्म शब्दों के जरिए बाहर निकले आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 अंजलि है आपके साथ इस वक्त

तेरी सादगी पर दिल हारा है मैंने तेरी हर बात को दिल से माना है मैंने तू ही मेरी पहली और आखिरी चाहत है तुझ में ही अपना सब कुछ पाया है मैंने

तुमसे मिलकर जाना मोहब्बत क्या होती है, कैसे दिलों में चाहत की शमा जलती है, हर लम्हा तेरे संग बिताना चाहता हूँ, अब तो बस यही इबादत दिल करता है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 और इस वक्त गीत सुहाने का ये सुहाना सा सफर मैं और आप तय कर रहे हैं यहाँ पर लिखूं तो लफ्ज तुम हो लिखूं तो लफ्ज तुम हो सोचूं तो ख्याल तुम हो मांगूं तो दुआ तुम हो सच कहूं तो मोहब्बत तुम हो

थोड़ी देर में सुनिएगा समाचार और उसके बाद 2:10 पर एक बार फिर से आप और मैं होंगे साथ साथ आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को

फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 2:11 और इस वक्त रात सुरमई। रात सुरमई हो तो भला दिल में उमंगे क्यों ना उमड़े, समुद्र में उफनती लहरों सी दिल की आवाज सुने या दिल की तन्हाइयों से कुछ बात करें। ये सफर कुछ ऐसा ही रहेगा, एहसास जज्बात सभी रंगों में रंगे गीत पहुंचेंगे आप तक। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1, अंजलि है आपके साथ।

0: blisk med dig.
1: Blisk med dig.
2: राज सुरमई आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 अंजलि है आपके साथ और चलिए बता ही देते हैं कि क्यों आपके साथ इस सफर पर हम साथ-साथ हैं तो ये पूछा है ना सवाल कि आप यहां आए किस लिए तेरे प्यार की राहों में चलते जाना है तेरे प्यार की राहों में चलते जाना है हर मुश्किल को हंसते हुए सहते जाना है थाम कर तेरा हाथ ओ मेरे हमसफर जिंदगी के हर मोड़ पर मुस्कुराते जाना है

हर रात तेरी यादों का जहर पीता हूँ, टूटता हूँ बिखरता हूँ फिर भी जीता हूँ, शायद यही किस्मत में लिखा था मेरे, तेरे बिना हर पल यूं ही तड़प।

जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल झुके जहाँ पलके तेरी खुले जहाँ जुल्फे तेरी रहूं उसी मंजिल।

तेरा ख्याल तेरी तलब और तेरी आरजू एक भीड़ सी लगी है मेरे दिल के शहर में प्यार में समर्पण चाहिए ये समर्पण बहुत से रंग रूप लिए होता है जीना उसकी गली मरना उसकी गुली वही मेरी दुनिया वही संसार सांस भी वही आस भी वही जिंदगी की चाहत भी वही जिंदगी की हकीकत भी वही

में ही तड़प नहीं प्यार में जो नहीं होते वो भी दर्द में रह सकते हैं दर्द भी जीवन का ही एक रूप है और इस रूप में ढलना रंगना डूबना और उससे निकलना भी एक ही तरह का आर्ट है हर किसी को कभी ना कभी इस रंग में डूबना पड़ता है इस रंग से रूबरू होना पड़ता है इसलिए इस कला को इस आर्ट को समझना जानना और सीखना भी बेहद जरूरी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 और जो हम ये सफ़र गीत सुहाने का तय कर रहे हैं ना, अब हमें वक्त तो ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी चलते चलते देखिए एक बहुत ही प्यारा सा नगमा आप सब के लिए यहाँ पर हमने चुनकर रखा है, फिल्म दिल एक मंदिर और मीना कुमारी जी, राजेंद्र कुमार और राजकुमार जी आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। इस फिल्म में बहुत ही मर्म स्पर्शी ये गीत है, लता जी की आवाज़ में शंकर जयकिशन का संगीत है। तो चलिए लुत्फ उठाइए इस गीत का और इसी के साथ अंजलि को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप सुनते रहें हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीश शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और काउंसलर सेवाओं को संभालने वाले आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। उस तारीख से भारतीय पासपोर्ट, वीजा और काउंसलर सेवाओं के लिए सभी आवेदन अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स द्वारा संचालित तथा तय केंद्रों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत आज बर्मिंघम के एजबेस्टन में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron today. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event. Upon arrival, Mr. Modi received a warm and enthusiastic welcome from members of the Indian diaspora at Hotel Negresco. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi was accorded a vibrant community reception in Nice, where members of the Indian diaspora gathered in large numbers to welcome him. The Prime Minister also witnessed colorful performances featuring classical Indian dance forms such as Kathak, Odissi and Bharatanatyam, presented by French and Italian artists. Today at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron will jointly launch Bharat Innovates, a flagship platform showcasing India's innovation and startup ecosystem. The two leaders will also hold bilateral talks to review cooperation in key sectors including technology, defense, innovation and strategic affairs. From France, the Prime Minister will travel to Slovakia for the second leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: The White House said that US President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi during next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The five-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said, "Indore Declaration is not just a document of agreement, but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations." The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next chief of the army staff with effect from the 30th of this month. He is presently serving as the vice chief of the army staff. The present chief of the army staff, General Upendra Duvedi, is retiring from service the same day. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam yesterday during a routine sortie, claiming the lives of five air warriors. The Indian Air Force IAF has expressed grief at the loss of lives. The IAF said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief at the loss of five air warriors. The Indian Space Research Organization Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief said that ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है हमराही। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में कभी रात दिन हम दूर थे। ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, इतना समझदार होकर भी क्या करना है। समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है कुछ, समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है कुछ, इससे तो हम ना समझ ही अच्छे हैं। 3:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

मिल जाए अगर समय से सजा हर गुनाह की मिल जाए अगर समय से सजा हर गुनाह की तो फिर शायद इतने गुनाह ही ना हो मिलने लगे सुबह के कर्मों की सजा अगर शाम तक मिलने लगे सुबह के कर्मों की सजा अगर शाम तक तो फिर शायद कर्म भी उसी हिसाब से ही हो नीचे की अदालत में तो मिलती है सजा तमाम सबूतों गवाहों और के बयानात पर नीचे की अदालत में तो मिलती है सजा तमाम सबूतों गवाहों के बयानात पर ऊपर की अदालत में जहां खुदा ही गवाह खुदा ही जज हो वहां क्यों होती है देर मेरी इस बात का कोई जवाब तो हो होगी खुद खुदा की भी कुछ मजबूरियां शायद होगी खुद खुदा की भी कुछ मजबूरियां शायद वरना हर जगह इतने गुनहगार ना हो मिल जाए समय से सजा हर गुनाह की तो फिर शायद इतने गुनाह ही ना हो 3:26 हो चुके हैं सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही

वो है जरा खफा खफा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:32 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

करोगे अगर तलाश तो पा ही लोगे जिसे तुम चाहते हो। करोगे अगर तलाश तो पा ही लोगे जिससे तुम चाहते हो। यूं घर बैठे तो तलाश पूरी नहीं होगी। निकलो जरा घर से बाहर, निकलो जरा घर से बाहर, क्या पता तुम्हारी तलाश में कोई और भी भटक रहा हो। 3:51 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

3:58 हो चुके हैं अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही अब से कुछ ही देर बाद आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए रविवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जल डमरू मध्य सभी के लिए खुला रहेगा। ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के उस संकेत के कुछ घंटों बाद आया जिसमें कहा गया था कि अमरीका और ईरान बातचीत के आखिरी चरण में हैं और समझौते के लिए रविवार को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जाना है। हालांकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ने रविवार को हस्ताक्षर करने की योजना से इनकार किया और कहा कि इसका ढांचा अभी तक तय नहीं हुआ है और साथ ही उन्होंने इस दिन को लेकर ट्रंप के अजीब आग्रह की आलोचना भी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 4:10 हो चुके हैं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही सारी पूरी हो जाएं ये जरूरी तो नहीं सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा क्योंकि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं 4:11 हो चुके हैं कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और एक बार फिर से मैं ही हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मेरे यानी अर्चित के साथ

किशोर कुमार जी की आवाज में ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। सिर्फ भागने से अगर मिल जाती मंजिलें, सिर्फ भागने से अगर मिल जाती मंजिलें, तो भाग तो पूरी दुनिया ही रही है। हासिल ए मंजिल यहां उसी को होती है, हासिल ए मंजिल यहां उसी को होती है जिसकी दिशा भी सही होती है। 4:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ ना करना। कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ ना करना, क्योंकि गलती से की गई गलतियां तो सुधारी जा सकती हैं, पर जानकर किए गए गलत कामों को सुधारना अक्सर मुश्किल होता है।

हसरत तो सभी की है कि बिताए जिंदगी कुछ सुकून से, हसरत तो सभी की है कि बिताए जिंदगी कुछ सुकून से, पर उस सुकून को पाने की तलाश में दिन रात और बेचैन होते जा रहे हैं। चार बजकर 31 मिनट हो चुके हैं। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित।

होती होंगी कुछ मजबूरियां रात से लेकर सुबह तक जागने वालों की भी होती होंगी कुछ मजबूरियां रात से लेकर सुबह तक जागने वालों की भी वरना सुकून भरी नींद और ताजगी भरी सुबह किसे पसंद नहीं यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा

दिन रात उलझे रहते हैं दुनिया से मिलने में कहीं दिन रात उलझे रहते हैं दुनिया से मिलने में कहीं खुद से मिलने की फुर्सत ही नहीं कुछ पल खुद के साथ बैठो तो सही कुछ पल खुद के साथ बैठो तो सही फिर इतने लोगों से मिलने की जरूरत ही नहीं चार बजकर चवालीस मिनट हो चुके हैं आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ

सिर्फ काटना ही हो मकसद तुम्हारा तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी सिर्फ काटना ही हो मकसद तुम्हारा तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी पर हम लोग यहां पर जिंदगी काटने नहीं जिंदगी जीने आए हैं 4:57 हो चुके हैं अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक निवेशकों और बाजार से जोड़ने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम भारत इनोवेट्स की भी श्री मोदी संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी होटल नेग्रेस्को में उनका गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया। श्री मोदी ने इस स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये अनुभव उनके लिए यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि घर से हजारों मील दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की ही तरह मजबूत बना हुआ है। स्लोवाकिया में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने ब्रेस्टिलावा में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। असम के जोरहाट में कल सुबह वायुसेना के AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत की खबर है। विमान नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन समाप्त हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में उन्नत तकनीकों के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली और हविल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाहन 7:35 तक आयोजित होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। उधर ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ करेगा। मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए मैचों में 16 में से 13 मुकाबले अपने नाम कर चुका है। शुक्रवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 5 विकेट पर 161 रन बनाए। आयरलैंड की टीम 19 ओवर और 1 गेंद में 121 रन पर ही सिमट गई। शुक्रवार को ही प्रतियोगिता के पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रन से हराया। उधर फीफा विश्व कप के तीसरे दिन सैन फ्रांसिस्को बे एरिना स्टेडियम में ग्रुप बी का मैच कतर और स्विट्जरलैंड के बीच ड्रॉ रहा। स्विट्जरलैंड कतर के खिलाफ 1 गोल से आगे था, लेकिन बाद में कतर ने बराबरी का गोल किया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। कल ग्रुप सी में ब्राजील और मोरक्को का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:30 से होगा। अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. Upon arrival, the Prime Minister received warm and enthusiastic welcome from members of the Indian diaspora. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi was accorded a vibrant community reception in Nice, where members of the Indian diaspora gathered in large numbers to welcome him. The Prime Minister also witnessed colorful performances featuring classical Indian dance forms such as Kathak, Odissi and Bharatanatyam, presented by French and Italian artists. Today at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron will jointly launch Bharat Innovates, a flagship platform showcasing India's innovation and startup ecosystem. The two leaders will also hold bilateral talks to review cooperation in key sectors including technology, defense, innovation and strategic affairs. From France, the Prime Minister will travel to Slovakia for the second leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: The Prime Minister thanked the Indian diaspora in Nice, France for the warm welcome accorded to him. In a social media post, Mr. Modi described the gesture as memorable. He emphasized that despite being several kilometers away from home, the bond of the Indian diaspora with India remains as strong as ever. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia today. Talking exclusively to Akashvani News, Indian Ambassador to Slovakia, Apoor Srivastav, said that the Prime Minister Narendra Modi's visit to Slovakia would open new avenues of cooperation between the two countries and help deepen economic ties.
3: So the visit of Prime Minister to Slovakia is going to be a historical one because this will be the first ever visit by any Indian Prime Minister to Slovakia. So we are all looking forward for this visit, and this is likely to enhance not only the political relations but also deepen economic engagements and open new avenues for cooperation in various sectors like defense, clean technologies, cybersecurity, tourism and people-to-people contact.
1: The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. On Wednesday, President Trump is scheduled to hold a bilateral meeting with Prime Minister Modi before joining a working lunch attended by G7 leaders, outreach partners and technology executives. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next chief of the Army Staff with effect from the 30th of this month. He is presently serving as the Vice Chief of the Army Staff. The present Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, is retiring from service the same day. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam yesterday during a routine sortie claiming the lives of five air warriors. The Indian Air Force, IAF, has expressed grief at the loss of lives. The IAF said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of accident. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief at the loss of air warriors. The Indian Space Research Organisation Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief said that ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. As part of the celebrations leading up to the International Day of Yoga 2026, the Ministry of AYUSH, in collaboration with the Morarji Desai National Institute of Yoga, MDNIY, and Habilt, will organize a landmark global online yoga event today. The online yoga session will be held from 6:15 a.m. to 7:35 a.m. and is expected to witness participation from more than 130 countries. And in the ICC Women's T20 World Cup, India will begin its campaign against arch rivals Pakistan at Edgbaston in Birmingham today. The match will begin at 7 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 5:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूं हाजिर आपके साथ, आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम।

सूरज की पहली किरण में वो तेजी वो गर्मी नहीं होती जो दोपहर के सूरज में होती है। ठीक वैसे ही किसी भी काम की शुरुआत हमेशा धीरे धीरे ही होती है। कुछ समय लगता है किसी भी चीज को अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए। 5:16 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।